0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Have you heard? Census 2027 house listing operation has begun in Nagaland. These are informations to be collected.
2: Basic household amenities such as drinking water, LPG, electricity, sanitation and other essential facilities.
1: When the census officials visit your home, kindly provide accurate information and extend your full cooperation.
2: Your cooperation matters. Our census, our development.

0: मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीप

0: दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर

0: हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इन टू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
4: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored cold gas-based uprighting system was developed and tested. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism, the

विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है, जिसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कोलंबिया के बुकारा मंगा में 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये थे अभी तक के आकाशवाणी FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरिया और कहना आपसे यही चाहती हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब है धीमी रफ्तार, तो अपनी सोच को यहीं पर रोक लीजिए, क्योंकि नए जमाने का मोटो है लाइफ 60 के बाद भी सुपरहिट है। जी हाँ, आज के सीनियर सिटीजन के पास एक्सपीरियंस तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आसपास नज़र उठा के देखें तो आज के सीनियर सिटीजन एक्टिव हैं, बहुत से हैं जो लोग फिटनेस आइकन हैं, ट्रैवलर हैं, सोशल मीडिया के स्टार्स हैं, मोटिवेट करते हैं दूसरों को और लाइफ की इस सेकंड इनिंग्स में एनर्जी से भरे हुए हैं। एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम, यही रेनबो हेल्पलाइन का आज का टॉपिक है। और हमारे आज के प्रोग्राम में हमारी एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अर्चना दासी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशल वर्क जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हैं। प्रोफेसर अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
1: नमस्कार। नमस्कार सारे सुनने वाले श्रोता, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और आपसे बात करके।
0: आपसे बहुत सारे सवाल आज करने हैं, एक्टिव एजिंग होती क्या है, हाउ टू मेंटेन दिस एक्टिव एजिंग, और साथ ही साथ बहुत से सवाल, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो सुनने वाले हैं उनके जहन में भी खासे सवाल होंगे कि ये जो एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम है, ये क्या चीज़ है, या फिर बढ़ती उम्र के साथ साथ इस एनर्जी को और स्पिरिट को कैसे हम बरकरार रख सकते हैं। आपके सभी सवालों का हम स्वागत करेंगे इस घंटे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर अपनी कोई भी क्वेरी पहुंचा सकते हैं, या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111026, या फिर आप हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन 01123421080 या फिर 2342-1082 पर फोन करके अपने सवालों को हम तक पहुंचा भी सकते हैं। और फिलहाल प्रोफेसर अर्चना, आप लंबे समय से जो हैं सोशल वर्क से जुड़ी रही हैं, और एक्टिव एजिंग की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट क्या है एजिंग का, पहले तो आपसे यही जान लेते हैं।
1: अगर एजिंग को देखा जाए तो एजिंग तो वैसे एक प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्डर है, तो मतलब बच्चा टीनेज बन जाता है, फिर उसके बाद वो अडल्ट बन जाता है, उसके बाद वो वृद्ध बन जाता है, तो बेसिकली तो वो ग्रो ही कर रहा है। एक अपनी उम्र का असर जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर दिखता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एजिंग की बात करें तो हम ये कहते हैं कि

0: ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली एक डिक्लाइन दिखने लगता है, एक जो है वो ढलाव आने लगता है। तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि शायद एक उम्र के साथ साथ वो व्यक्ति जिसको हम वृद्ध कहते हैं, वो शायद अपने वातावरण में जो बदलते हालात हैं उनके साथ कोप अप नहीं कर पाता है। तो हम कहते हैं कि भाई अब ये लोग एजड हो गए हैं।
1: जी,
0: तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एजिंग की।
1: एजिंग की है, लेकिन साथ ही साथ आप और हम तो खूब समझते हैं इस बात को कि एजिंग जो है इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एजिंग लाइक इन नंबर्स, लेकिन स्पिरिट की, और इस एक्टिव एजिंग को बरकरार कैसे रखा जाए। मेरा अगला सवाल प्रोफेसर अर्चना से यही होने वाला है कि आज जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं न्यू मिलेनियम में, और इनफैक्ट प्रोग्राम में आने से पहले, स्टूडियो में आने से पहले प्रोफेसर अर्चना से यही बात हो रही थी कि आज के समय का भारत युवा भारत है, लेकिन बहुत जल्द वो समय भी आने वाला है जबकि एजिंग पॉपुलेशन हमारी, यही जो युवा हैं आज से कुछ दशकों के बाद जो हैं उस कगार पे होंगे, तो उस समय की तैयारी भी करनी है, स्पिरिट्स को भी बहुत एक्टिवेटेड और मोटिवेटेड रखना है। तो आप तो मुझे ये बताइए कि ये जो हम लोग एक्टिव एजिंग है, हाउ कैन इट बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिव एजिंग टू द फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, समाज के लिए, दूसरों के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए। जैसे आपने एक किस्सा आप बड़ा अच्छा सा बता रही थी, कोई हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, उसके बारे में प्लीज चर्चा कीजिए, तो हमारे श्रोताओं को भी थोड़ा सा समझ में आएगा।
0: तो अभी हाल ही में जो एक मूवी आई है और आजकल चल भी रही है, हिंदी मूवी है, उसमें एक एक दादाजी हैं, बहुत ही एल्डरली हैं, शायद 90+ हैं, और उनको जो है वो डिमेंशिया हो गया है, उन्हें सब कुछ भूल गया है पुराना, और वो पार्टीशन में के टाइम पे यहाँ पे आए थे, और जो भी उनकी कुछ मेमोरीज रही हैं, और जो इंटरेस्टिंग बात है वो सारी उनकी कुछ फॉन्ड मेमोरीज हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक मेमोरीज हैं उनके बचपन की, और उन मेमोरीज के साथ उनके अपने बच्चे, उनके अपने बेटे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ बहुत खूबसूरती से उनका पोता कनेक्ट करता है। सो दिस इज द इंटरजेनरेशनल बॉन्ड जिसकी हम बात करते हैं, और मुझे लगता है कि हर ग्रैंड पेरेंट अपने बच्चे को जो है वो शायद उनके साथ उतना एंजॉय नहीं करता जितना अपना पोते पोतियों के साथ एंजॉय करता है। तो वो एक कनेक्ट जो है, और वही कनेक्ट आज के मिलेनियम में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये मिलेनियम जो है इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें अर्बनाइजेशन है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं। अब इस बदलती हुई दुनिया में जो ये यंग जनरेशन है, अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे गया और उसमें यही स्लोगन था कि आप जो है वो यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो यूथ जो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए सक्षम बने आज भी और फ्यूचर की भी। तो जैसा कि आकृति जी आपने कहा कि फ्यूचर की तैयारी भी करनी है, तो वो आज ही के यूथ को यहीं से शुरू करनी है।
1: एब्सोल्युटली, और कहा जाता है ना कि 60 साल का बूढ़ा या 60 साल का जवान, यही अंतर है आपकी स्पिरिट में, द वे यू लुक, योर अप्रोच, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम, यही आज की रेनबो हेल्पलाइन का विषय है। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अर्चना दासी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशल वर्क जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हैं। आपके सवाल हम तक पहुंचने शुरू हो गए हैं, इस ट्रैक के बाद उन सभी सवालों को मैं लूंगी। नए जुड़ने वालों को बता दूं हमारा आज का व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं, वो है 9868107070।

रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आकृति खंडूरी और पूछना आपसे यही चाहती हूं कि क्या आप भी यही मानते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। आज 60 साल की उम्र में आपने देखा होगा लोग मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 70 की एज में स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं और 75 की एज में सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग हैं जो अपनी असल ज़िंदगी जो है रिटायरमेंट के बाद शुरू कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। वो दे आर फिज़िकली एक्टिव, यानी कि बढ़ती उम्र नहीं बल्कि बढ़ता इंथुज़ियाज़म जो है वो मायने रखता है। रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है एक्टिव एजिंग की, जहां हर दिन है एक नई शुरुआत और उम्र का हर पड़ाव है ज़िंदगी का एक नया सेलिब्रेशन। जी हाँ, एक्टिव एजिंग

0: न्यू मिलेनियम, यही रेनबो हेल्पलाइन का आज का टॉपिक है। हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्चना दासी हमारे साथ हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशल वर्क जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हैं और आप लोगों के सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं। पहला सवाल हम तक आया है मीरा जी का, जो कि दिल्ली से हमसे जुड़ी हैं, और मीरा जी का कहना है कि हाल फिलहाल में मैंने बच्चों के कहने पर ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शंस जो हैं वो शुरू कर किए हैं। कुछ ख़रीदना होता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन हर दिन अखबार में ये जो डिजिटल फ्रॉड की खबरें आती हैं उसको देखकर बड़ी घबराहट भी होती है। तो प्रोफेसर रचना कुछ कहेंगी इनके लिए?
1: मीरा जी, पहले तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस शुरू किया, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने पासवर्ड, अपना OTP, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किसी से शेयर ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप कुछ चीज़ ख़रीदारी कर रही हैं किसी भी पोर्टल से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो अगर हो सके तो एक अपना बैंक अकाउंट जो है वो अलग खुलवाइए, जिसके अंदर एक छोटा अमाउंट रखें, 5-7 हज़ार रुपये टाइप्स रखें, और उसी बैंक अकाउंट को यूज़ करें अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ ख़रीदना हो। कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब कर रही हैं तो उसमें किसी भी तरीके का जो ल्योर होता है कि ये आपको फ्री मिलने वाला है, ये कर लीजिए तो इसके साथ हम आपको ये वाला बोनस दे देंगे, ये आपको कुछ फ्री कूपन मिलेगा, उस तरह के किसी भी चीज़ में फंसे नहीं, बिकॉज वो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फिर फ्रूटफुल नहीं रहेगा। हो सकता है चांसेस हों कि उसमें स्कैमर्स भी हों, क्योंकि हम जो छोड़ तो सकते नहीं है किसी भी चीज़ को। अगर मिलेनियम की बात करें तो एक तरह जहाँ डिजिटल रेवोल्यूशन है वहाँ पे स्कैमर्स भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है।
0: जी, विजिलेंट और अलर्ट रहिए। अगला सवाल आया है अशोक साहब का गाज़ियाबाद से, और ये कहते हैं कि मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं और दूसरे शहरों में बसे हुए हैं, और बड़ा खालीपन सा, बड़ा अकेलापन सा लगता है। चाहते नहीं हूँ, रोज़ बाहर भी निकलता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मन किसी बात में नहीं लग रहा है। तो क्या कहेंगी प्रोफेसर रचना?
1: मैं बस एक सुझाव देना चाहूँगी आपको सर। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए काम करती हैं। वो बच्चों के लिए काम कर रही हैं, वो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, वो हो सकता है जो हमारे झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में लोग रहते हैं वो उनके लिए काम कर रही हैं, और उन्हें आप जैसे पढ़े लिखे लोग एज वॉलंटियर ज़रूरत होते हैं। तो अगर आप अपने आसपास की किसी भी स्वयंसेवी संस्था से जुड़ना चाहें तो दे विल डेफिनेटली वेलकम यू, और फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके टाइम की भी वैल्यू हो रही है, आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू हो रही है, और आप कुछ दे पा रहे हैं समाज को वापस। बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने आप को बिजी रखना इस तरीके से।
0: जी हाँ, आई थिंक इनके सवाल के माध्यम से एक बहुत बड़े मुद्दे की बात हम लोग कर सकते हैं इस वक्त। जो सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है, उनके जो नोटेबल ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं प्रोफेसर अर्चना? बिकॉज हमने देखा है समाज में एक इस तरह की सोच सी बन गई है कि आप अब रिटायर हो गए हैं, आपने जिंदगी भर में जितना काम करना था कर लिया है, अब आराम करने के दिन है, और यही आराम करते करते किस तरह से आप आइसोलेट होने लगते हैं, आपका मन उदास होने लगता है, पता ही नहीं चलता। तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस नोटेबल ट्रेंड अमंग सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन।
1: तो जो सोच है समाज की अभी भी वो यही है कि अच्छा अब रिटायर हो गए तो यानी कि वृद्ध हो गए, अब वृद्ध हो गए तो यानी कि अब बीमार हो गए, अब बीमार हो गए तो अब इसका मतलब अब आप डिपेंडेंट हो गए। तो ये वाली सोच जो है ये तो कहीं पे समाज में दिखती है हमको, लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय 10% पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन की, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 10% पॉपुलेशन जो है वो 60+ वाले लोगों की है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन्स की है, और यही संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अगर आप देखेंगे तो अर्बन एरिया के अंदर जो है वो
0: कम

0: वृद्ध रहते हैं, रूरल एरिया में करीबन 70% लोग रह रहे हैं, और अगर इंडिया के रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो साउथ के जो स्टेट्स हैं और वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ओल्डर पीपल है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो दिख रहा है और बहुत तेजी से दिख रहा है वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग, यानी कि वृद्धावस्था का नारीकरण। तो आप ये देखिए कि रफली जो इस समय एल्डरली पॉपुलेशन है, जो वृद्ध लोगों की संख्या है, उसमें करीबन 60% जो है वो एल्डरली पॉपुलेशन महिलाओं की है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा लंबा देर तक जीवित रहती हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। तो अब आप ये देखेंगे कि उसकी वजह से जो है वो आपको सिंगल विडो वुमेन बहुत ज्यादा नंबर में दिखेंगी, या उन औरतें जो हैं उनका क्रॉनिक डिजीजेस या इस तरह की प्रॉब्लम्स उनकी होने लगेंगी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होने लगेगी। तो ये एक नोटेबल ट्रेंड दिख रहा है, और इस मिलेनियम के अंदर इसी ट्रेंड को रिवर्स करने की जरूरत है, ताकि जब मैं एक्टिव एजिंग की बात करती हूं तो दो मुद्दों को, दो चीजों को बार बार मैं कहूंगी, एक ऑटोनॉमी और एक इंडिपेंडेंस। ये दो की गोल्स हैं एक्टिव एजिंग के। ऑटोनॉमी का मतलब सीधा सीधा है कि आप अपने जीवन से जुड़े हुए फैसले खुद कितने सक्षम तौर से ले सकते हैं, और दूसरा इंडिपेंडेंस कि आप इंडिपेंडेंटली अपने कितनी चीजें खुद कर पाते हैं। तो ये दो हमारे की गोल्स हैं एक्टिव एजिंग के, और इनकी सख्त जरूरत है इस नए मिलेनियम में।
1: जी, बहुत ठीक कहा प्रोफेसर अर्चना आपने कि ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, और ये दोनों ही हमारे ही हाथ में है। मतलब ये तो सोच की तो बात है, अगर आप सोचें कि आप डिपेंडेंट हैं, अब आप वृद्ध हो रहे हैं तो आप हमेशा के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर आप सोचें कि नहीं खुद ही करना है, आप मतलब यकीन मानिए ये इतनी अमेजिंग ताकत हम इंसानों के अंदर है, अगर जितना उसको जागृत करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा बाहर निकल कर आएगी। और ये एक तरह का एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए कि जब तक जिएंगे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियां खुद करें, आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा। इनफैक्ट अगला सवाल रेणु जी का हम तक दिल्ली से आया है, और ये कहती हैं कि भूलने की सी आदत हो गई है, छोटी छोटी बातों को ही मैं भूल जाती हूँ। कुछ दिनों पहले का बरसों पुरानी बात याद रहती है, लेकिन हाल फिलहाल की बातें याद नहीं रहती। तो किसी ने कहा है कि कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, अब इस उम्र में क्या नया सीखूँ। तो रेणु जी को अगर आप कुछ हेल्प देना चाहें, क्या नया कर सकती हैं
0: आप? कुछ भी नया कर सकते हैं आप। जरा मन में ये सोचिए, क्या कोई ऐसी चीजें थी रेणु जी जो आप अपनी जवानी में, बचपन में करना चाहती थी और उस समय कर नहीं पाई? जैसे गाना सीखना, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखना। तो कुछ ऐसी चीजें जो आप सीख सकती हैं जिसमें ब्रेन को एफर्ट करना पड़े। बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर आप कुछ भी ना कर सकें, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखती हैं या आपके फोन्स में, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें जो है वो सुडोको आता है, तो सुडोको एक पजल है, गेम है, अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज आपको करनी है जिससे ब्रेन की एक्सरसाइज हो और उससे आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होगी, डेफिनेटली शार्प होगी।
1: एब्सोल्युटली, कुछ नया सीखिए, नई भाषा सीख लीजिए। आजकल बड़े ऐप आते हैं और बहुत इजी होता है, इट्स फन एज वेल एज इट्स अ लर्निंग ब्रेन एक्सरसाइज। संगीत सीखिए, जैसा कि आपने कहा कि जब आप यंग होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे होते हैं, बहुत कुछ होता है, आपको समय ही नहीं मिल पाता अपने लिए, लेकिन अब तो बहुत समय है। फिलहाल एक मैसेज हम तक पैंथर तोमर साहब का आया है, और जो कहते हैं कि न्यू मिलेनियम में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ मानने लगे हैं, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बूढ़े पेरेंट्स के लिए एक्टिव एजिंग के क्या मायने रह गए हैं। प्लीज बताएं कि जो सेंसिटिविटी बच्चों में या यूथ में कम होती जा रही है, उनको कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं?
0: बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हमने कहा कि जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे ये कहते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट इज द स्लोगन, तो कहीं पे शायद बचपन से ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है कि वो अपने बच्चों को बुजुर्गों से कनेक्ट करके रखें। तो किस तरह से हम उनको जोड़ सकते हैं वो बहुत ही बड़ा काम है हमारे लिए। हम ये भी मान के चलते हैं कि ठीक है उनके पास समय का अभाव है, क्योंकि इस समय जिस रफ्तार से जिंदगी चल रही है उसमें समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके यंगर जनरेशन के साथ खुद इनिशिएटिव लेके जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है हम अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे सीनियर सिटीजन होके तो वो भी फिर एक कदम बढ़ाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो कहीं पे एक तो हम अपनी जो वो अहम है, ईगो है कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटे हैं तो इनको मेरे पास पहले आना चाहिए, तो लेट अस टेक द इनिशिएटिव एंड लेट अस स्टार्ट दैट फर्स्ट स्टेप। और वही एक छोटा सा स्टेप जो हम अपनी यंगर जनरेशन की तरफ बढ़ाएंगे उनको समझने में, उनके साथ इन्वॉल्व होने में, तो वही एक बहुत बड़ी जर्नी बन जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर अर्चना, आप कह रही हैं कि जितना आप यूथ के साथ रहेंगे उतना ही एनर्जेटिक जो है यूथ भी फील, हम भी अपने अंदर वो यूथ को फील करेंगे। एंड एट द सेम टाइम बच्चों के लिए भी ये है, नहीं भूलना है कि समय का चक्र तो चलता ही जा रहा है, देर वुड बी अ पॉइंट जब हम भी उसी स्थिति में होंगे। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और होगा ज़रूर। आप जैसे लोग जो कि वर्क करना चाहते हैं एक्टिव एजिंग के बारे में, लोगों को अवेयर करते हैं, बार बार इस बात को, इस संदेश को पहुंचा रहे हैं लोगों को कि हार मत मानिए, एक सीखने की, एक सीकिंग, एक लर्निंग की स्पिरिट आपके अंदर रहे, तो एक्टिवली आप एज भी करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्लेस दैट यू आर। फिलहाल ये ट्रैक रॉकस्टार फिल्म से प्रोफेसर अर्चना की रिक्वेस्ट पर मैं प्ले कर रही हूँ, सुनिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूँ मैं आकृति, और आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि क्या आपने कभी सोचा था कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह तब होगी जब आपको समाज एक तरह से रिटायर्ड एज की कैटेगरी में डालता है। हम लोग सोचते हैं रिटायरमेंट का मतलब है सब काम हो गया, सारी जिम्मेदारियां हो गई, बस अब आराम करना है, कुछ नहीं करना है। इवन जो परिवार के यंग लोग हैं वो भी वृद्ध लोगों को एक कोने में बिठा देते हैं कि नहीं अब आप बैठ के आराम कीजिए, काम करने का दिन हमारा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। जीवन तो जीने का नाम है, आराम नहीं, बल्कि ये उम्र है जबकि नए सपनों को उड़ान देना है, नई हॉबीज अपनाने का दिन, नई फ्रेंडशिप्स बनाने का दिन, नया लाइफस्टाइल, नई आइडेंटिटी होनी चाहिए। प्रोफेसर अर्चना यही हमें बता रही हैं आज के प्रोग्राम में। जब हम एक्टिव एजिंग की बात कर रहे हैं तो एक्टिव एजिंग का मतलब ये नहीं है कि आई मीन वन हैज़ टू रीजनुएट एंड रिवाइव वंस ओन स्पिरिट। यही सब सवाल आपके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर भी पहुंच रहे हैं। और रेनबो हेल्पलाइन की आज की हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्चना दासी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशल वर्क जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हैं, यही बात हमें बता रही हैं। और फिलहाल फरीदा खान, इनका ये मैसेज हम तक आया है और ये कहती हैं कि मुझे कुछ बीमारियां हैं जिसके चलते मैं बहुत एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, बाहर नहीं निकल पाती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ इस उम्र में, मुझे तो घर में बस बंद सी हो गई हूँ।
2: फरीदा जी, फिजिकली एक्टिव तो रहना पड़ेगा। अब ये सोचना है कि कैसे रहेंगे फिजिकली एक्टिव। तो क्या ये मुमकिन है? ये मैं दो चार सुझाव जो मेरे जहन में आ रहे हैं मैं वो देती हूँ, अब वो आप देखिए कि उसमें क्या हो सकता है पॉसिबल। एक तो ये हो सकता है कि क्या आप अपने घर से बाहर सिर्फ 15 मिनट के लिए वॉक करने के लिए जाए?

0: सकती हैं, सिर्फ 15 मिनट, 15 से 20 मिनट बहुत है उसके लिए। अगर वो मुमकिन नहीं है तो घर में रहते हुए जो है आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, योगा क्लासेस, जिनको ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक फीलिंग ऑफ फिटनेस भी आएगी। तो इस तरह की कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। घर में एक्टिव रहने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपके टाइम में आपकी अम्मी ने अगर आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ सिखाई हो, क्या उन रेसिपीज़ को फिर से ट्राई किया जा सकता है घर में? उसके लिए किचन में जाया जा सकता है, थोड़ा बहुत किसी का सपोर्ट लेके, किसी का हेल्प लेके, अगर कुछ भी एक्टिविटी विद इन द हाउस भी की जाए। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें आदत हो जाती है, अगर हमें प्यास लगी तो हम कहते हैं भाई कोई पानी पिला दो। एक एक्टिविटी ये है कि आप उठ के फ्रिज तक जाते हैं, आप वहाँ से पानी निकालते हैं, आप पानी पीते हैं, वापस उस बॉटल को थोड़ा भरते हैं और फिर वापस रख के फिर अपने बेड के पास वापस आ जाते हैं। अब जो ये मूवमेंट थी ये भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ही ऐड होती है। तो आपको ये देखना होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट की जाएं। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है।
1: चाहे बीमारी कितना भी हो, लेकिन लाइक वी आर सेइंग कि हमारी जो शरीर है ना, इसकी मसल्स जो हैं उनको अगर आप जितना इनएक्टिव रखेंगे वो उतनी ही रिजिड होती जाएंगी, बिल्कुल
0: दर्द करने लगेंगी।
1: और जितना उसको एक्शन में आप रखोगे वो उतनी फ्लेक्सिबल रहेंगी और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो बहुत अच्छे से प्रोफेसर रचना ने बताया कि काम करने के लिए बाहर निकलना नहीं भी होता है तो घर में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक और मैसेज हम तक आया है कि जिंदगी में हमेशा अपने काम से, मनोहर सिंह जी कहते हैं कि इतना बिजी रहा कि कभी कुछ फ्रेंड सर्कल बना ही नहीं, अब रिटायरमेंट के बाद जो है समझ नहीं आ रहा कि कैसे सोशली एक्टिव रहूं, क्या किया जाए।
0: अब जो है वो जहाँ कहीं भी, जिस किसी नेबरहुड में मनोहर जी रहते हैं उस नेबरहुड में बाहर निकलिए और इनिशिएटिव लीजिए अपनी तरफ से, अपने नेबर्स पड़ोसियों के साथ इंटरेक्ट करने का। आपके आसपास में अगर कोई पार्क है तो उस पार्क में जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं वो बैठे मिलेंगे, ग्रुप्स में बैठे हुए मिलेंगे। अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए उनके पास जाने का, उनसे बात करने का, और फिर आप देखेंगे कि दोस्त बनाना तो बहुत आसान है और सीनियर सिटीजन्स के पास तो कला है कि उनके पास तो इतने सारे अनुभव हैं, अगर आप वही बताना शुरू कर दें तो वैसे ही लोग आपके आसपास बैठ के जो हैं वो आपसे मिलना चाहेंगे, इंटरेक्ट करना चाहेंगे।
1: बहुत ठीक है आपने कहा, दिल्ली जैसे शहरों में तो खैर बहुत से सीनियर सिटीजन के क्लब हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, आप कहीं पर भी जाएं आप जरूर कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने बड़ी अच्छी बात का एक जिक्र किया प्रोफेसर अर्चना की, आप अनजान लोगों से भी, व्हाई कांट वी बी द फर्स्ट वन टू इनिशिएट एनी कन्वर्सेशन। और आप देखिए आज के जमाने में किसी के पास फुर्सत नहीं होती किसी से बात करने की, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिले जो आपसे बढ़कर हालचाल आपका पूछ रहा है, लोग आपको चाहेंगे कि दोबारा मुलाकात हो और दोस्ती बन जाएगी।
0: आप पार्क में जाके देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करना चाहते हैं। और एक चीज जो सीनियर सिटीजन्स के अंदर क्वालिटी है, उनके सुनने की बैंडविड्थ बहुत अच्छी है, तो वो सुन सकते हैं बैठ के और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ कुछ उनको सुझाव भी दे देंगे। ऐसे लोग तो बहुत ही पसंद आते हैं। लेकिन अगेन, क्योंकि मैं ये समझ सकती हूँ आपने आज तक इस तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया, तो हो सकता है थोड़ी झिझक होगी, थोड़ी हेसिटेशन होगी, लेकिन उस झिझक को आप ही छोड़ सकते हैं, आप ही तोड़ सकते हैं। पहला कदम बढ़ाइए, फिर देखिए
1: और राजी कीजिएगा,
0: और राजी कीजिए, शाम में निकलिए और देखिए फिर आपकी ये सारी शिकायत दूर हो जाएगी।
1: किसी एक को आप किसी अनजान आदमी के सामने आज आपने हेलो कहना है, इनिशिएट करना है,
0: मुस्कुराइए, मुस्कुरा के नमस्कार कहिए और फिर देखिए कि कैसे वही आपके साथ जो है वो साथी बन जाएंगे वॉक करने। करने के लिए।
1: एब्सोल्युटली प्रोफेसर अर्चना, अगला सवाल मेरा आपसे है, हाउ कैन वी प्रमोट एक्टिव एजिंग, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं।
0: देखिए, दो तीन चीजें जो है जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसको हमें समझना जरूरी है, और अगर हम उन एक्टिविटीज को हैंडल कर लें तो इसका मतलब हम एक्टिव एजिंग को कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और जब हम बात करते हैं एक्टिव होने का, तो हमें एक्टिव कैसे होना है, हमें फिजिकली भी एक्टिव रहना है, मेंटली भी एक्टिव रहना है, सोशली भी एक्टिव रहना है, फाइनेंशियली भी एक्टिव रहना है। तो पहली चीज जब हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये बात आ जाती है कि हम विद द ग्रोइंग एज कई बार बहुत सारी डिजीजेस, जो बर्डन ऑफ डिजीज है वो आ जाता है। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक हेल्थ प्रमोशन और एक डिजीज प्रिवेंशन। मतलब ये नहीं कि जब बीमारी हो जाए तो उसको फिक्स करें, नहीं, पहले से ध्यान रखें कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी हेल्थ जो है वो सही रहे। तो उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंडिया में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग बड़ा रिच, ऑयल रिच खाना खाते हैं, नॉर्थ की तरफ तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, और हमें ये लगता है कि अगर हम ऑयल रिच खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत बढ़िया खाना है। तो हाई कैलोरी फूड के बदले न्यूट्रिशियस फूड खाना एक हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कितने एल्डरली, स्पेशली महिलाएं, ये इंश्योर करती हैं कि वो दूध पिएं या वो पल्सेस खाएं या एग खाएं, अगर वो खाती हैं, नॉन वेज खाती हैं या नॉन वेजिटेरियन जो भी फूड आइटम्स हैं वो खाएं, या फ्रूट खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स प्रेफर करें। तो हम ये कहते हैं नहीं, हमें ये पसंद ही नहीं है। अब ये पसंद ना पसंद का सिलसिला जो है इसको ख़त्म करना होगा। ये समझिए कि उस गोली खाने से बेहतर है हम न्यूट्रिशियस फूड खाएं। तो पहला है हेल्थ प्रमोशन, उसको अपनी हेल्थ को इंश्योर करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिस जो एक्टिव एजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिजीज प्रिवेंशन है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें परेशान कर रही है उसको इग्नोर नहीं करना है। हम सीनियर एज में आके कई बार जो है वो हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, सिर में दर्द ही तो है, अरे कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। इम्यूनिटी कम होने लगती है जैसे ही हम सीनियर होने लगते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे हमें लगे कि ये हमारी हेल्थ में, रूटीन में ऐसा नहीं हो रहा था, तो ज़रूरी है एक बार चेकअप करवाना, एक बार डॉक्टर को दिखाना। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो फिजिकल हेल्थ हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी ने अभी, हमारे एक श्रोता ने कहा अकेले हो जाते हैं, तो ये सोशल आइसोलेशन जो है ना, सामाजिक रूप से ये जो हम अकेले हो जाते हैं, ये इस मिलेनियम का अनफॉर्चुनेटली एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जहाँ पे बच्चे दूर दूर चले गए, अपने आप नहीं चले गए, हम ही ने उनको पढ़ाया लिखाया और हमने उनको कहा कि गो एंड ग्रैब द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब जब वो चले गए तो हम अकेले रह गए, अब हम कह रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो अब ये इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को मेंटली भी एक्टिव रखना। जैसा कि हमने कहा कि कोई नई चीज़ सीखिए, कोई नई भाषा सीखिए, कुछ ब्रेन से रिलेटेड गेम्स खेलिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा देखा गया है कि बहुत से एल्डरली अकेलेपन में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं। उन सब चीज़ों को पहले से ही कॉशस रहना है, सतर्क रहना है। और किसी ने कहा कि भूल जाते हैं, एक बहुत आसान नुस्खा है चीज़ें याद रखने का। एक बार सेट कर लीजिए कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और ये इंश्योर करिए कि वो चीज़ जब वहाँ से उठाई जाएगी तो उसको वापस वहीं रखा जाएगा, तो कभी भी आपकी चीज़ें जो हैं वो गुम नहीं होंगी, वो मिलती रहेंगी आपको। कुछ बिहेवियर चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स को। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं या अगर आप स्मोक करते हैं तो कोशिश करिए कि अब इन चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करिए कि अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिंस मिलती हैं। तो हल्का सा भी सिर दर्द हुआ तो चलो दवाई खा ली, कमर में थोड़ी सी दर्द हुई तो एकदम से कोई भी पेन किलर खा लिया। तो इस तरह की बिहेवियर चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेशली विमेन के लिए जो अपने न्यूट्रिशन को इग्नोर करती हैं, वो प्लीज़ अपने न्यूट्रिशन को इंश्योर करें। आखिरी बात, जो एल्डरली अकेले रह रहे हैं उनके एक्टिव एजिंग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो घर है वो एक सेफ हाउसिंग की तरह होना चाहिए। जैसे जब बच्चा छोटा होता है ना, तो आप पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि घर में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए, सारे कॉर्नर्स राउंडेड होने चाहिए।

मुस्कुराए, चले, नया कुछ सीखे, सपने देखे। जी हाँ, एक्टिव एजिंग इसी को कहते हैं। और छोटी छोटी सी आदतें हैं जो आपको सेफ भी बनाएंगी, सिक्योर भी बनाएंगी और साथ ही साथ एक्टिव भी बनाएंगी। रेनबो हेल्पलाइन से जुड़े रहिए। एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम, यही आज का टॉपिक है।

रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है उम्र के उस पड़ाव की जिसे यूं तो जीवन की संध्या कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है ये एक ऐसा उम्र का पड़ाव है जहाँ पे लाइफ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चेहरे के हर रिंकल में मुझे एक नई कहानी लगती है। मुझे मालूम है हमारे घर के कुछ बुज़ुर्ग बार हैं और जब भी वो आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हम बदल से जाते रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि नहीं मम्मी, आपकी एक एक रिंकल में मुझे इतनी खूबसूरती नज़र आती है, क्योंकि वो

0: खूबसूरती उनकी एक्सपीरियंस की है, और साथ ही साथ हर एक्सपीरियंस, हर लर्निंग, हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी ला सकता है अगर आपकी स्पिरिट और आपका वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ एंड इट्स अफेयर चेंज हो जाता है। एक सवाल है, उसके बाद मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं सीनियर सिटीजन की केयरिंग के लिए। बट इन साहब का एक प्रश्न आया है, इनका नाम है महेश साहब, और ये कहते हैं कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करते, वो तो हमेशा जल्दी में रहते हैं या फिर अपनी टैबलेट्स में, फ़ोन में बिजी रहते हैं। इनको क्या कहें महेश साहब को?
1: महेश जी, ये तो आजकल जो है वो इस समय की विडंबना है कि घर में अगर 6 लोग बैठे होंगे तो वो सब अपने अपने फ़ोन में बिजी होंगे। मतलब लगता ही नहीं है कि कोई किसी से बात भी करना चाहता है। तो मेरे ये स्ट्रगल मेरे ख्याल से जो है वो इस समय हर घर की है, लेकिन ये डेफिनेटली ज़रूरी है। अगर घर में कुछ इस तरह की चीज़ें, नियम बना लिए जाएं कि अगर हम मान लीजिए खाना एक साथ खाते हैं डाइनिंग टेबल पे, कोई भी ऐसा समय है जब हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो बात करने की कोशिश करने में जो है वो उनके बारे में बात करना। तो इसका मतलब एल्डरली को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि ये यंगर जनरेशन किस तरह की बातचीत करना चाहती है, या ये एक किस तरह के मुद्दे इनको बहुत अच्छे लगते हैं। आप उनसे कोई नई चीज़ पूछिए कि क्या चल रहा है आज, या आजकल जो है ये नए शॉर्टकट्स लैंग्वेज में क्या यूज़ किए जाते हैं, इसका क्या मतलब है। तो कहीं पे एक बिगिनिंग करनी होगी और देखना होगा कि वो जिस तरह की बातचीत करना चाहते हैं वहां से शुरू करनी है हमको बातचीत। बाद में हो सकता है उन्हें फिर इंटरेस्ट आने लगे और वो फिर हमसे हमारे अनुभव पूछने लगे।
0: इंटरेस्ट बहुत होगा क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन तो सब है लेकिन बहुत डिलेमा है, बहुत कंफ्यूजन है जो दिमाग के अंदर चलता है, और उन्हें कोई अगर प्यार से सुनने वाला मिलेगा तो वो बहुत अपने दिल की बात भी शेयर करेंगे। लेकिन समय जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आपसे चलते चलते आखिरी सवाल जो पूछना चाहती हूँ वो ये कि गवर्नमेंट की सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं?
1: गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन के लिए चलाई हैं, जैसे डे केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन दिन में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने को हैं, तो इस तरह से डे केयर सेंटर चल रहे हैं। ओल्ड एज होम्स हैं जिन एल्डरली के पास किसी तरह का सोशल सपोर्ट नहीं है, जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पा रहे हैं, उनके लिए ओल्ड एज होम्स हैं। मोबाइल मेडिकल वैन्स हैं जो बहुत सारी NGOs चला रही हैं जिनको, और वो अलग अलग एरियाज में जो है वो एल्डरली के पास पहुंच के वहां पे उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे एल्डरली जो फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जिसमें बहुत थोड़ा सा एक अमाउंट जो है वो एटलीस्ट उनको मिल जाता है। डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बट स्टिल यू नो इट्स अ स्मॉल अमाउंट। अभी कुछ समय से जो है वो हर बड़े अस्पताल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जीरियाट्रिक क्लिनिक्स खुल गई हैं, यानी कि एल्डरली के लिए स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स खुल गई हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आ रहा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पूरी एक विंग जो है वो जीरियाट्रिक विंग बन गई है
0: जी।
1: और इसी तरह से एक आखिरी चीज कि नेशनल एल्डर हेल्पलाइन है 14567 जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी सपोर्ट और एनी इमरजेंसी। ऑल दीज आर गवर्नमेंट स्कीम्स।
0: और चलते चलते कुछ टिप्स हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए,
1: डिजिटली अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, UPI यूज करना सीखिए, वीडियो कॉल्स करना सीखिए, खासतौर से व्हाट्सएप पे स्कैमर्स को पहचानना शुरू कीजिए कि किनको हर आजकल उतनी साधारण जिंदगी नहीं है कि सतयुग में नहीं रह रहे हम कि कोई परेशान नहीं करेगा। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, जो जिनको पता है कि आप जो है वो सीनियर सिटीजन्स को देख सकते हैं। हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, उसको बिल्कुल मत छोड़िए, अपने आप को सोशली एंगेज करिए, ये बहुत बहुत जरूरी
0: है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर रचना दासी साहब, आप हमारे साथ रही और एक्टिव एजिंग के बारे में आपने इतना कुछ बताया। और चलते चलते मैं आकृति भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि एक्टिव एजिंग लाइफ का वो फेज है, वो पड़ाव है जब मुझे लगता है कि हम खुद को, अपने आप को, खुद को गहराई से समझ सकते हैं जिंदगी भर।

0: चलता ना, ये समय है अपने आप के अंदर झांक के देखिए, नई सोच को अपनाइए, नया आउटलुक होना चाहिए और उम्र की गिनती आई थिंक हमें अब छोड़ देनी होगी। सपने गिनिए, नए कदम बढ़ाइए और नई मुस्कुराहटों को भी आई थिंक नए नए रिश्ते बनाने का समय भी ये भी है।
1: अपनी गोल्डन एज कहिए।
0: जी हाँ, एब्सोल्युटली गोल्डन एज होगी। आइए प्रॉमिस करते हैं कुछ नया सीखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे और जैसा आज हमने सीखा कि किसी ना किसी से जरूर जुड़ेंगे। तो इसी के साथ रेनबो हेल्पलाइन से मुझे यानी आकृति को दीजिए विदा। नमस्कार।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना है।

सरकार ने बताया कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है, जिसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉडल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वरीव को हराया। ये थे अब तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम आशियाना की। आशियाना एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम परिवार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त आरजे शालिनी। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, समय आगे बढ़ता रहता है और हमारा समय भी बढ़ रहा है। और आज का टॉपिक हमारा ये है कि जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए हर परिवार में ना कुछ चैलेंजेस आते ही हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में काम और परिवार के बीच जो संतुलन है वो बनाना बहुत ज़रूरी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो बड़ा चैलेंजिंग भी हो गया है। बढ़ती पेशेवर जिम्मेदारी और परिवार की अपेक्षाओं के बीच कई लोग ना खुद को समय की कमी से जूझता हुआ पाते हैं। और ऐसे में पता है दोस्तों क्या ज़रूरी है? ऐसे में ज़रूरी है कि हम काम और परिवार दोनों को ही बराबर इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि करियर हमें पहचान देता है लेकिन परिवार हमें भावनात्मक मजबूती और सहारा देता है। तो एक सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने व्यस्त जीवन में अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय निकाल पा रहे हैं?

दोस्तों, कार्यक्रम आशियाना में हम बात कर रहे थे परिवार में बैलेंस बनाने की, यानी काम और परिवार के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप दिन की प्रायोरिटीज को सेट कर लें और काम और परिवार के लिए अलग अलग समय को निर्धारित कर लें, तो बैलेंस बनाने का जो स्ट्रेस है ना, वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पता है एक्सपर्ट क्या मानते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑफिस का काम ना ऑफिस में ही रहना चाहिए और परिवार का समय परिवार के नाम होना चाहिए। और इसके लिए आप कर सकते हैं छोटी छोटी कोशिश जिनसे परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। क्या हो सकती है वो छोटी छोटी कोशिश, उनके बारे में करेंगे बात एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना। दोस्तों हम बात कर रहे थे परिवार में बैलेंस बनाने की और ऑफिस का काम ऑफिस में ही निपटाने की, जिससे कि आप परिवार और काम के बीच एक बेहतर बैलेंस बना सकें।

दोस्तों, लेकिन आजकल के डिजिटल एरा में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल हम में से सभी लोग करते हैं और इनकी वजह से ना काम और घर की सीमा काफ़ी हद तक मिट चुकी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में लगातार संदेश आते रहते हैं जो बार बार आपको काम की याद दिलाते हैं। ऐसे में हम में से कई लोग घर पर मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका ध्यान काम में ही लगा रहता है और इसका असर पड़ता है पारिवारिक रिश्तों पर। दोस्तों, ऐसे में पता है क्या ज़रूरी है? ऐसे में ज़रूरी है कि परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को स्क्रीन से मुक्त रखा जाए। पता है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जब आप घर पहुँचे तो माता पिता, बेटा बेटी जो भी हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, अपने मोबाइल को एक बास्केट में रख दें और जो घर में भी रह रहे हैं, बुज़ुर्ग लोग या फिर मम्मी हैं आपकी, तो वो भी अपना फ़ोन एक बास्केट में रखते हैं और एक नियम बना लें कि डिनर के दौरान या फिर उसके बाद के कुछ एक घंटे के समय के लिए कम से कम कोई उस मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। पता है ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप सभी एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, संवाद करेंगे और जब आप लोगों का आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो रिश्तों में अपनापन और मजबूत होगा।

दोस्तों, लगातार जब ऑफिस में काम होता है ना, तो उसका दबाव और साथ ही साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ना स्ट्रेस का कारण बन जाता है। ऐसे में अगर हम परिवार के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो उनका जो सहयोग है वही हमारी

सबसे बड़ी ताकत बनता है। इसलिए परिवार के साथ खुलकर बातचीत करना, अपनी परेशानियां साझा करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए हमें हमारा काम तो बेहतर करना ही है, लेकिन साथ ही साथ परिवार के साथ अपने रिश्तों को भी समय देना चाहिए।

दोस्तों कई बार ना हम सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सफलता ना केवल पेशेवर उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि हम अपने परिवार और रिश्तों के लिए कितना समय निकाल पा रहे हैं। काम और परिवार ना जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों का संतुलन बेहद ज़रूरी है। इसलिए जब हम अपने परिवार और करियर दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तभी हमारी लाइफ सही मायने में सक्सेसफुल कहलाती है। इसलिए परिवार और अपने काम के बीच बैलेंस बनाइए और रिश्तों को मजबूत करिए। फिलहाल समय है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का, वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
2: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
2: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
2: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
3: हमारे खेतों से पानी भर गया, सारे
4: फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे

0: या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था, जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की। लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात। यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते,
2: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी में।

0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: ऊपर ले जाना होगा,
2: सारा सामान
1: जल्दी
2: ऊपर
1: ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर,
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
2: चलो चलो,
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए,
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हां साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
3: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
4: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले।

गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी।
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
5: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी पर तो हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पर फाड़ गए।
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
5: हाँ ठीक है ना, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
3: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

0: वो देख पा रहा। अरे हाँ वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
0: न जाने कौन लोग हैं।
2: पता नहीं कौन लोग हैं।
0: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
2: चलो चलो।
3: खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
0: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए।
3: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
0: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे, भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है, और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
0: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा रहेगा।
4: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
2: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा।
0: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है। मगर ये औरतें और बच्चे।
0: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ,
0: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
1: हाँ,
0: अरे कोई है? हाँ, अरे बाहर निकलो,
1: बाहर।
0: चाची।
5: हाँ क्या बात है?
0: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: क्या जंगल?
0: जल्दी आओ,
4: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
0: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
1: बिल्कुल
0: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
2: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
0: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो पेड़ को। अरे हटो हथियार को,
6: अरे हटो हटो,
0: ये कुछ नहीं कर सकते। चाची तुम भी यहाँ से चिपक जाओ, चिपक जाओगे इसे। अब हम पेड़ों से चिपक गई हैं, अब चलाओ कुल्हाड़ी।
6: देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
0: हम जान दे देंगे, अरे शिब्बा, शिब्बा तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
6: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पैरों से अलग कर दो। अरे खुदा जय देवान जय सभी बड़ो लगे चलो।
4: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
7: चिब्बू भाग ले यहां से, भाग
8: ले के बाद में बाद में काट लेंगे।
4: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
9: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
10: ऐसी ऐसी चिपकी पेड़ से किसी ने छोड़ा ही नहीं पेड़ को। अरे
0: सबका कर्तव्य है।
4: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
11: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
12: और विमलेश को
11: कुसुमलता
12: जगबंधु
11: चेतना
12: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
11: नमस्कार, नमस्कार।
13: उमंग उमंग उमंग उमंग।
14: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो पर। फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर आगे आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक गीत।
15: FM Tracoban

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

हाँ जी प्यार लिसनर्स, शेख हमाद बिन खलीफा अल दानी जनवरी 1952 1952 डे चनम बाईशे आरो दाई 1995 प्राय लुइकिना 2013 दा कतार लगा एमियर हेड ऑफ स्टेट थाकिशे दाई जो काली जुलाई 12 डेरेक इडो दुनिया छारिकना जैशे आरो अमिकान लगा देश लगा सागर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रा आजी 13 जुलाई 2026 रिस्पेक्ट दिखाए कि ना स्टेट मॉर्निंग डे डिक्लेयर करिशे इधर कारण आज स्टेट मॉर्निंग प्रोटोकॉल दी था ज्ञानिश ना अमी खान लगा आकाशवाणी एफएम ट्रैक बंदे प्रोग्राम बजाई दिया से आहा गाली बरा आगो रेगुलर एंटरटेनमेंट अनि दिया हो बो यदि अमी खान लगा हिंदी फिल्म कान प्रोग्राम सेस कर दिया से आरो ओलो पासो दे अपनी खान होनी बोली पाओ बो नागामीस आरो अंग्रेजी दे रीजनल खबर

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास

0: बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार

0: वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
2: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
3: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
2: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है।

हाँ जी प्यार लिसनर्स, हम यहाँ सब आकाशवाणी एफ एम ट्रैक बने 103 मेगाहर्ट्ज़ दे हिंदी फिल्म कान प्रोग्राम दे स्वागत कर से और आज लगा दिन 13 जुलाई 2026 इतो आमी खान देश लगा सागर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरा स्टेट मॉर्निंग डे डिक्लेयर करिशे के लिए माने शेख अहमद बिन खलीफा अल धानी दैट इज फादर अमीर ऑफ द स्टेट ऑफ गधार ताई जा काली दुनिया चारेना जैसे आरो ताई के रिस्पेक्ट गदार लगा देश के रिस्पेक्ट दिखाई ना आज लगा दिन तो स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर करा से इतो कारणी आज लगा प्रोग्राम दे स्टेट मॉर्निंग लगा प्रोटोकॉल हिसाब दे गान बजाई दिया हो तो हमने सब जुड़े की ना होने भी गुना उम्मीद करा से

हाँ जी प्यार लिसनर्स, आप ध्यान होने से हिंदी फिल्म कान प्रोग्राम ये दिया गर्श वन एफएम ट्रैक बाय 103 मेगाहर्ट्ज़ थे और आज ये आमी खाला का प्रोग्राम लोगों थे गर्श वन एफएम ट्रैक बन यदि इमानो थे सेस करते आओ बो काली पोचोर आको छोए बजे बालू की ना आमी खान लोगों थे चुरे ना प्रोग्राम होनी वो पार बो तो आमी यान की मन चुनती हूँ ना से सबके दौर खुशी चुनाई दिया से और हम यान सब भाल रात मानी भी कोई ना आको उम्मीद करे से वी हैव नाउ कम टू द एंड ऑफ अ प्रोग्राम हियर एट द गाशवन एफएम ट्रैकबन वी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग एट 6 AM अंटिल देन हैव अ गुड नाइट एंड अ लवली टाइम अहेड